0: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays, 6 to 7 p.m. Lotus FM. You are listening to Geetanjali. You are listening to Geetanjali. Lotus FM.
1: You are listening to Geetanjali. मैं हूँ खुशी पारेख और मैं आपका स्वागत करती हूँ गीतांजलि के इस शो पे. आशा करती हूँ कि आपको पहला गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा. ये गाना लिया गया है कृष्णा अवतारम पार्ट वन हृदयम से. और आज हम बात करेंगे एक न्यू कमर के बारे में जिसने तहलका मचा दिया है बॉलीवुड में. अपने लुक से, अपने काम से सबका दिल मोह लिया है. सुनिए एक और गाना कृष्णा अवतारम से और फिर चर्चा करेंगे इस एक्टर पे.
2: मन से याद करो तो पास में

0: The countdown to Africa's greatest horse racing and social event is on. On Saturday, 4 July, the Hollywood Bets Durban July takes over Hollywood Bets Greyville Racecourse in a dazzling celebration of country allure, where style and entertainment take center stage. Your general access ticket also unlocks an incredible live music experience featuring Grammy Award-winning artists Zakes Bantwini and the Ensemble, and some of Mzansi's biggest stars like Mikasa, Will Lindley, Tamara Day, Vicky Sampson, Supreme 3, Will Reyes, and Angel Masibugo. Country Char meets rustic glamour in a celebration like no other. Be part of one of South Africa's most iconic events. Get your tickets now at Ticket Pro.
1: EFC is live this Thursday. Cape Town's very own undisputed bantamweight champion, he's the troublemaker Jacobs, puts his gold strap on the line. But a hungry challenger, the relentless gift walker, steps up to the biggest stage to try cement his name in the history books.
2: How's the troublemaker sound?
3: Sounds not just good to me. I am an animal.
1: One champion, one challenger. Live this Thursday from the World Sports Betting Arena. Watch it on SABC Sport Channel on DTT Channel 4 from 7 p.m. Brought to you by SABC Sport.
4: You are listening to Get Down to Lead.
5: मैं हूं आपकी अपनी आरजे खुशी पारेख और यू आर लिसनिंग टू गीतांजलि. आशा करती हूं कि आप ये शो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे होंगे. तो बताइए, आपको क्या लगता है कि किस न्यू कमर के बारे में मैं बात कर रही हूं? फोन उठाए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए. ये जो गाना अभी आपने सुना, कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी और कुंज बिहारी, कृष्णा अवतारम से लिया गया है. और मैं बात कर रही हूं एक एक्टर की जिन्होंने इसी मूवी में लीड का रोल किया है. और ये एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वास्ते सॉन्ग में भी. तो एंजॉय कीजिए ये दूसरा गाना और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कौन से एक्टर है. हु डू यू थिंक द एक्टर इज? एंड व्हाट्सएप मी ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. वेटिंग फॉर योर आंसर्स.

0: You are listening to Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: आप सुन रहे हैं गीतांजलि आपकी खुशी परख के साथ. सो सिद्धार्थ गुप्ता देहरादून में पैदा हुए थे, देहरादून उत्तराखंड में. उनके भाई है विकास गुप्ता. विकास गुप्ता को आपने बिग बॉस सीजन 11 और 13 में देखा होगा. जो भी बिग बॉस देखते हैं उनको पता होगा कि विकास गुप्ता कौन है. वो एक प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक क्रिएटिव डायरेक्टर है इन हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री. He initially studied engineering in Dubai. तो सिद्धार्थ गुप्ता इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे दुबई में. Later he relocated to Mumbai for an acting career, developing his skills in theatre. The song that you just heard was sung by none other than Neeti Mohan and Sonu Nigam, written by Irshad Kamal. What a beautiful song. Next coming up is Pia Samaye by Shafakat Amanat Ali and Arshad Hussain.

0: listening to Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: आप सुन रहे हैं गीतांजलि खुशी पारेख के साथ. तो सिद्धार्थ गुप्ता ने 2014 में कुकुर मुत्ता की झंड हो गई में काम किया था, 2020 में कॉफी में, और 2026 कृष्णा अवतारम पार्ट वन में वो एमटीवी झंड होगी सबकी में भी काम कर चुके हैं एज अ होस्ट. प्यार तूने क्या किया में वो होस्ट थे, और रागिनी एमएमएस रिटर्न 2017 में वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया था. अगर आपने दीवानी गाना सुना है तो आपको पता होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गाना है, तेरी दीवानी. और मुझे लगता है कि ये उस गाने का मेल रिप्लाई है जो है दीवाना दीवाना.

0: are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: आप सुन रहे हैं गीतांजलि खुशी परेख के साथ लोटस एफएम पे. कहते हैं ना कि इश्क, पूजा, इबादत, ये सारी चीजें एक ही है. इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस शिद्दत से करनी चाहिए, फिर भले इश्क हो, पूजा हो या इबादत हो. तो इसी बात पे एक शायरी जाहिर है, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता. इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता. एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता. एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता. आपने जिसको मन में बसा लिया तो फिर आप उसे इश्क करो, उनकी पूजा करो या इबादत करो, सब एक ही है. तो सजना के सजदे में हम तो सवरने लगे. सुनते हैं एक और गाना सिद्धार्थ गुप्ता का, बाय जानी मोहम्मद फेज, कभी शाम ढले. दिस इज अ रीमेक ऑफ द सॉन्ग कभी

0: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: आप सुन रहे गीतांजलि आपकी अपनी खुशी परेख के साथ. आशा करती हूँ कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा. हम बात कर रहे हैं एक न्यू कमर सिद्धार्थ गुप्ता के बारे में, जिनका पहला गाना लॉन्च हुआ था 7 साल पहले वास्ते, और उनकी मूवी रिलीज हुई है कृष्णा अवतारम इस ईयर मई में. Alright, that was a beautiful song of Siddharth Gupta. तो सिद्धार्थ गुप्ता एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहते हैं कि वो ना एक डिटैचमेंट फेज में है, डिटैच हो चुके हैं अपने रिजल्ट्स से और यू नो सारी चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन काफ़ी की थी, उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी, यू नो श्रीमद् भगवद गीता और काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी, और वो खुद कहते हैं कि जो वो 2 साल पहले थे और जो वो अब है वो 2 अलग लोग हैं. और कहते हैं ना कि कर्म, कर्मा, कोई बोलता है कर्मा, कोई बोलता है कर्म, तो कर्म या कर्मा इज द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल. वी कैन ओनली कंट्रोल आवर एक्शंस. देयर इज नथिंग मोर दैट वी कैन कंट्रोल इन दिस वर्ल्ड. द रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड. द बेस्ट वी कैन डू इज टू डू आवर कर्मा. द बेस्ट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन डू. देन लीव द रिजल्ट्स टू द यूनिवर्स. तो उसी को कहते हैं ना कि कर्म कर पल की इच्छा मत कर. Bringing you a beautiful, beautiful song by Sonu Nigam, अंत ही आरंभ, क्योंकि हमारे शो का अंत आ रहा है और हमने खूब सारी बातें की सिद्धार्थ गुप्ता पे और उनकी मूवी पे. आशा करती हूँ कि आपको ये शो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा. मुझे तो बहुत मज़ा आया आप सबके साथ. तो अंत ही आरंभ है, तो इस शो का अंत है लेकिन किसी और चीज का आरंभ है. वी विल बी लिसनिंग टू टॉक एट 7 विद रवाश आफ्टर द न्यूज. सो खुशी पारेख साइनिंग ऑफ. एंजॉय द सॉन्ग.